0: 奇，海蓝宝石，石榴石，
1: 超爱碧玺，
2: 我也是
3: 四百五一克。
4: 在塔什库尔干塔吉克自治县这座边境小城，这家巴基斯坦人开的老牌玉石店几乎无人不知。
5: 93年开的，
0: 对对，这个、
5: 开了这么多年啊。
0: 这是我爸爸和叔叔开的店。
5: 哦，你是二代。
0: 对。
6: The main thing my father and uncle told us, never ever tell lie to the customer. The second thing, never ever be angry, be sweet.
4: 这是艾明接班的第14年，他将父辈的生意经营成了塔县最大、口碑最好的玉石店。而今年，艾明有了一些新打算。
6: A lot of tourists come here. 有没有吃的东西 ？To drink from Pakistan, and we are just so we decided to have some food products in our shop. And this is the main thing which I want to do this year.
4: 扩大经营范围并非易事。艾明打算去喀什拜访一位塔吉克族老友，听听他的看法。
6: Oh, so missed you so much.
7: I miss you so much also.
6: Okay.
7: When are you back to Tashkogan?
6: Maybe tomorrow. How is your jade business now?
7: Yeah, I also try to go to Pakistan and see what's going on here.
6: Okay.
7: Emerald or ruby mine.
6: Okay, that's great. So, I can help you out in it.
7: We want a top quality.
4: They share
7: a good quality.
4: It's very good quality.
7: How's your side?
6: I want to bring this juice to China.
7: Yes, you're checking the market or not?
6: Yes, I am checking a little.
7: Just my one friend has come from India, China, about this.
6: Okay, there's great.
7: It's juice.
6: I will take some samples、
7: yeah.
6: from Pakistan. In it, we can find a buyer. We can work on it.
7: Bangladesh.
6: Bangladesh.
4: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
8: شومری اندی زنگ می‌دی که ام موبایل ترتو نه؟ یه آن وقت سر زخ خم که سر میشی نه؟
6: اوکی چرا زبر دست؟ چون یه کسی باف کن نه؟
4: 艾明与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。
6: ما وزن بسری ریخت پاکستان.
8: دیروز دیگه شو. تورت چه؟
6: ما وزن بیگان سنترا تورت سپرمر سات ساتر.
4: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾明的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
6: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。那么你把伊拉沃什么放那当？都 take there。Where's Alman? Where's your car? I'm not quite sorry.
4: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
6: 那个生意被提起来的几个，都准备在。
8: 谁搞了的？巴菲尔，啥子？
6: 咱吃米皮子跟那味子。嗯，咱吃米皮子，咱吃啥呢？
8: 美国 juice， 也都太带劲。美国 juice。
4: 虽然叔叔退休多年。但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
8: 93 Ulgobatkan.
0: баф ярах сарын, гүлман ұрқты ярах сарын. Ти скул джойниш ва фос така?
1: Школ сумен
0: пулту. Ой, скул сумен пулту, а? Ау, я, арту цумыл баф. Тобы кэрта не сумен?
1: Кохта.
0: Кохта, да?
1: Кэн хуя сурту, анди, я пушат.
0: Мазай турды така?
1: Я мата дэти.
0: Ау, та тэн царака цумыл шруй, я.
1: Big mountain.
0: Ай, като тук лук фито е сша, че нашу е за ней.
1: Не,
0: не. Сайди хана, я укару е. Да, баф, я каба. Ту
4: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
6: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
4: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
6: The food is more difficult than the songs. Chinese would like it.
0: कैसे हैं भाई ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई
7: 300
0: कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
4: 讨价还价控制成本是第二步
6: I am nervous because it's not a small business
0: थोड़ा महंगा बता रहे हैं
7: ये कम से कम में ना कोई
0: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
7: उसका वो खरीद
0: ही नहीं है रिटेल में इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
7: प्रॉफिट नो लॉस के साथ
0: थैंक यू
7: अल्लाह खुश रखे
0: बहुत शुक्रिया ओके